0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ।
2: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
3: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
2: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटमोल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9057990045 5799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
5: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावा दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग, नोटराइजेशन, एफिडेविट्स, डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स, पावर ऑफ अटर्नीज, बच्चा लई कंसेंट लेटर्स। बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 9052328700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
6: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
7: ओ प्रावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
6: सच्ची?
7: ओ मुच्ची,
6: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
7: इना कोला सालना दा तजुर्बा।
6: हुन एड्रेस भी लिखा।
7: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबी कोक, यूनिट 5।
6: कॉल 6477-0697-6477-0692-57।
4: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर, टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईव नजरो जून 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 9056781200-905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
8: वाह भाभी जी, मुबारक, तुहाडा घर ते बहुत शानदार है, कारपेट्स, वुडन, सब कमाल दे ने, लगदा है काफी खर्चा कीता है।
9: ए कमाल है जी, जीटीए फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान। वड्डे शोरूम ते आओ, हार्डवुड कारपेट, लैमिनेट टाइल्स दी खूबसूरत ते लार्ज वैरायटी पाओ। कॉल करो नव बराड़ नू 905-605-6805 905-605-6605।
10: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा,
11: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा।
4: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाउणा चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता, जो मिल्टन, कैलडन, ब्रैम्पटन, माल्टन, मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो। 7 डेज कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 4165618882 416-561-8882।
2: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
3: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
2: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
12: सॉलिड बम्पर चमका मारे, मठारू वेल्डिंग तो पवा लो सारे। मठारू वेल्डिंग,
13: मठारू वेल्डिंग, पुआओ, मूस बम्पर, डियर बम्पर, डीजल टैंक लॉक, ड्रिलर रैम, टायर रैक, ड्रिलर रिपेयर, अल्युमिनियम प्लेट बम्पर।
14: कॉल सनी मठारू
13: 6474663055 6476063555।
14: मठारू वेल्डिंग, यूनिट 1, 98 रदरफोर्ड।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: राजनीति का अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: लावल ओके जाओ। आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: स्नाइपर
2: देखी कितने सौ खा के

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है. तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

पाओगी, ये बात याद करोगी जब दूर चली जाओगी, बहकने दे मन को और कितना समझाओगी, तड़पोगी जब रेगिस्तान में प्यास लेकर आओगी, कहाँ इतनी प्यास लेकर जाओगी, पीछे मुड़कर देखो तुम।

0: 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आधे इन्ने सालां दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
2: CJMR 1320 This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
3: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थो तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री ली वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 905-799-0045 0575 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स
4: वाह गिल साहब ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी उपरो एनी सारी एनर्जी ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है
5: ओ यार काव्या होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ
6: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो बीमारी पावे कोई भी होवे कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन
8: घर होवे या ऑफिस ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग
9: एक्सेस रैंप्स एक्सकवेशन ग्रेडिंग रीसर्फेसिंग ओवरले फार्म ड्राइववे पेविंग ये सब कर देने आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु इट्स 416-818-8900
8: और विजिट www.calidonpaving.com
10: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ
11: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ
12: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਐਲਈਡੀ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ
11: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079 6477080079

0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪਛਤਾਉਣਾ।
1: जे बिजनेस का करना चाहते हो प्रचार तो रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस की प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
2: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
3: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: हाय, मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे। मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
2: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दे।
1: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल। उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने। सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
2: हां, नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां मिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
1: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
2: आहो, अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
1: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 ਪਟਰੋਡ ਮਾਲਟਨ ਇਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9056714290।
3: ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਬੈਸਟ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। 416-451-4565। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਰੰਟੀ। 416-451-4565 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ।
4: ਓ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੋਡ ਲੈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਫੇਰ ਖੜ ਗਿਆ ਯਾਰ।
5: ਓ ਭਰਾਵਾ, ਹੈਪੀ ਬੜਿਆਲ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਢੇਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ।
4: ਸੱਚੀ?
5: ਓ ਮੁੱਚੀ,
6: ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬੜਿਆਲ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਢੇਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਜਨ ਰੀਬਿਲਡ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੀਬਿਲਡ, ਰਿਪੇਅਰ, DPF ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ A to Z ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ।
5: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ।
4: ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖਾ।
5: ਲੈ ਲਿਖ ਲਾ, 1 Good Mark Place, ਇਟੋਬੀਕੋਕ, Unit 5।
6: ਕਾਲ 6477-706-9257।
7: पिछले 20 सालां तों कस्टम वुडवर्किंग दियां प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक गूगल ते 5-star रेटिंग हासिल कर चुकी वुडवर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट, क्लोजेट, बार, टीवी यूनिट जां डॉक्टर ऑफिस, डेंटल ऑफिस, ऑप्टिकल स्टोर दी वुडवर्किंग दा काम अपने बजट अते समय सिर करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो, मेपल वन किचन एंड बाथ इंक, 173 एडवांस बुलेवार, यूनिट 34, ब्रैम्पटन, और का 9054580075, 9054580075। मेपल वन किचन एंड बाथ इंक। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल PR कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या OCI ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर, टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईवनज रोड, जून 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 9056781200, 9056781200। कटारिया टूर्स and travel.
8: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
9: HK Movers,
8: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
9: For service with a smile, give us a call.
8: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
9: 416-524-6704.
8: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
10: Long distance moving specialist,
8: HK Movers.
11: HK Movers.
3: Aopita. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਟੀਮ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਉ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-716-7653 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.teammanjeet.ca। कैनेडा दी मन्नी परमानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शाह ट्रांसपोर्ट नू चाहिदे ने कुछ एक ड्राइवर्स। इमीडिएट हायरिंग हो रही है। ओनर ऑपरेटर्स, टीम, कंपनी ड्राइवर्स, टीम, सोलो ड्राइवर्स चाहिदे ने जी कंपनी दे वास्ते। कंसिस्टेंट लराडो टेक्सास दे रन्स, स्टेडी माइल्स अते रिलायबल काम पूरा साल दित्ता जावेगा। वधेरे जानकारी लई कॉल संदीप 416-903-8390। शाह ट्रांसपोर्ट दा यार्ड लोकेटेड है एट
11: 5758 Dixie Road, intersection 401 and Dixie. Number ek vari phir to 416-903-8390.
12: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
13: एक्सेस रैंप्स, एक्सकवेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कांटेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
12: और विजिट www.calidonpaving.com।
14: रिट्स फर्नीचर दा ए मैसेज जरा ध्यान ना सुनो। सस्ता

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi.
2: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाना चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन कैलडन ब्रैम्पटन माल्टन मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो। 7 डेज कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 416-561-8882 416-561-8882।
3: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
4: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
3: सच्ची?
4: ओ मुच्ची,
3: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
4: इना कोला सालना दा तजुर्बा।
3: हुन एड्रेस भी लिखा।
4: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, एटोबिकोक, यूनिट 5।
3: कॉल 647-706-9257
5: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.
2: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। येकर तो हड़ा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तो हड़ा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकते। सारे खर्चे ज्यूंदे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह के एक्सीडेंट हो दी सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला। मानसिक पीड़ां दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1-800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स।
6: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ, अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जित्थो तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। कॉल 905-450-6464
7: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट, लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
2: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

दो कुड़ियां साडी गली च रहंदियां, इक पतली इक भारी। हो पहाड़ी दाते ब्याह हो गया, पतली लगे प्यारी। के दाल में नमक भुल गई, के दाल में नमक भुल गई। जद खिच के हो, जद खिच के छेड़े ने अख मारी।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

तेरा न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: टेस्टी डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालिया दा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 1133 क्रेडिट स्टोन रोड, वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।

0: மிட்டாயா ஸ்நாக்ஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட் பெர்ஃபெக்ட் டைனிங் வியாதி பஜ்ஜி லைவ் கேட்டரிங் சார் ஃபுட் ட்ரக்ஸ் வினே கேட்டரிங் ஃபார் ஆல் பார்ட்டிஸ் குவாலிட்டி நம்பர் ஒன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னர் சப் மிலேகா டொரண்டோ ஃபுடிஸ் தி பெர்ஃபெக்ட் லொகேஷன் யானி ஸ்வீட் மெஹல் 680 ரெக்ஸ்டேல் புலிவர்ட் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் கால் சுக்கா காங்க 416-679-9191
1: ஸ்வீட் மெஹல்
2: नुड़करो के कैलेडन सब्जी फार्म तो तुसी हर तरह दी ग्रोसरी इंडियन स्टाइल कईयां दातियां रंबे खुरपे तंगलियां फोल्डिंग बेड नवारी पलंग मूड़े कुर्सियां टेबल पारे थले वाले हर तरह दे हर साइज दे बर्तन तो इलावा ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग कर सकदे हो साग बनया बनया भी मिलदा है जिन्ना मर्जी लाओ या घर ले आके साग तुसी खुद बनाउणा है तां कैलेडन सब्जी फार्म ते आओ 1250 एयरपोर्ट रोड एट मेफील्ड जानकारी लई कॉल करो 905-840-9000 कैलेडन सब्जी फार्म
3: घर का एक्सटीरियर होवे मजबूत लुक होवे कमाल दी ए है कमाल ओरकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी क्वालिटी वर्क प्रोफेशनल सर्विस बिल्ट टू लास्ट मैनसूरी ते स्टोन वर्क इंटरलॉकिंग फेंसिंग पैडियो रिटेनिंग वॉल्स बनाना चाहते हो लैंडस्केपिंग हार्डस्केपिंग थोड़े एक्सटीरियर प्रोजेक्ट लई कंप्लीट सोल्यूशन ओरकल कंस्ट्रक्शन रिपेयर तो लैके कंप्लीट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन तक ओरकल कंस्ट्रक्शन का नाम याद रखना जी अज ही कॉल करो 1-888-688-8956 या 416-474-6836 Oracle Construction Strong Foundations Lasting Results
2: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाउणा चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन कैलडन ब्रैम्पटन माल्टन मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो 7 डेज कम वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 416-561-8882 416-561-8882

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 12 PM एंड 6 PM टू 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
3: जो आया सो चल सी।
4: मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188 Lotus Funeral Home।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: Je kaloti da paigam wade saryan de naal. Jekar traffic ticket, small claims, city bylaws, ja makan malak kiraydar de pawne ch phas gaye ho, ta sade kai variyan de mahir tajrube da faida lavo. Je kaloti ajehana tuhadi mushkil kar denda aasan. Traffic court advocates, licensed by the Law Society of Upper Canada. Je kaloti, your record matters, you must take extra care. Now new location, 7920 here Ontario Street, unit 43 in Brampton. 905-790-5656. That's 905-790-5656. Je kaloti. Tried, trusted, most effective.
3: अगर तुहाडे बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है, तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहुंदे हो, तां इक्को इक नाम नूं याद रखना, पिछले 25 सालां तों कम्युनिटी दे विच मन्निया परमन्निया नाम, बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह, 416-451-4565. 25 साल दी दिंदे ने नाल वारंटी, 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा लई पानी दी लीकेज तों पाओ छुटकारा।
4: को

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए। मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: यह टाटा आटो इलेक्ट्रिक का इत्थे हर तरह दी कार वैन ट्रक अते एक्सयूवी दे स्टार्टर अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक का स्टार्टर अल्टरनेटर जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो घर शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555 416-740-5555। टाटा आटो इलेक्ट्रिक।
2: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
3: ओ यार काव्या, होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
4: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
5: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन।
6: रोज दे खाने तो हो गया बोर,
7: ट्राई करना चाहते हो कुछ होर?
8: ताजे स्वादले चाइनीज खाने ले आज ही पहुंचो एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट 2648 इस्लिंगटन एवेन्यू इटोबीको। फोन नंबर 416-749-8333 यानी 416-749-8333। जे वधिया स्वादला चाइनीज है खाना ता एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट ही आना।
9: एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट।
1: पील रेनोवेशन दा पैगाम, अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो, सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम पाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउन लई चेते रखो। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री, एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउन लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6476481847। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਦਰਾਸੀ, ਤਾਮਿਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ, ਡਰਾਮੇ, ਨਿਊਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475545859 6475558।
10: ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਵਾਦਲੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਫੂਡ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਓ। ਲਾਲੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਓ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਫੂਡ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਾਲੀ ਸਵੀਟਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਨ ਇਨ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਟ ਫੂਡ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਲਾਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚੋ 499 ਰੇ ਲੌਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਕਾਲ 905-450-6464।
9: Lali Sweet and Restaurant, Lali Sweet and Restaurant.
11: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.
12: जे बिजनेस दा करना चाहंदे हो प्रचार, तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस की प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
13: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: పేరు కూడా పుల్లయో నా. ప్రెసిడెంట్ కన్వెన్షన్ సెంటర్, ప్రెసిడెంట్ కన్వెన్షన్ సెంటర్,
1: స్వీట్ మహల్ వాళ్ళ బ్రాండ్ న్యూ ప్రెసిడెంట్ కన్వెన్షన్ సెంటర్. 100 to 700 ది కెపాసిటీ, డెలిషియస్ ఫుడ్, ఖుల్లీ ఢుల్లీ పార్కింగ్, బ్యూటిఫుల్ అంబియన్స్, మీటింగ్, వ్యాప్, బర్త్డే పార్టీ, ఎనివర్సరీ హోవే యా కోయి భీ ఫంక్షన్, పుల్లయో నా స్వీట్ మహల్ వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ కన్వెన్షన్ సెంటర. 1133 క్రెడిట్ స్టోన్ రోడ్, వాన్. ఫర్ బుకింగ్ కాల్ 416-433-9191.
0: ప్రెసిడెంట్ కన్వెన్షన్ సెంటర్.
2: सियाने कहंदे ने व्यादा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए.
3: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
2: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजा मिठाइयां अते खाने.
4: थोड़ा खाओ, वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ.
2: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191.
5: हाय, मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी.
6: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें.
5: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक.
6: हां, नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां मिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां उनू भी ले दांगे.
5: तो मेरे जीजे ली घड़ी,
6: आहो, अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने.
5: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 एयरपोर्ट रोड माल्टन, इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290.
7: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स. येकर तो हड़ा कार, वैन, ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है, या फिर तुसी किसे जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तो हड़ा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे, सारे खर्चे ज्यूंदे त्यों बरकरार हन, उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन, तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, कचीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने की सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला, मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरक दर्दां दी मलम. डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स. फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला, 1800567HURT 4878, और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010, 416-557-5010. डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स.
8: अपने दंदा दा रखो ख्याल, SM Supreme Deal Dental Center दे नाल.
9: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
10: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
8: SM Supreme Deal Dental Center, 2260 Bovade Drive East, Brampton. Bovade Jingusi Dental Center, 811 Bovade Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-8266.
7: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटरमॉल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन. नंबर 905-799-0045, 0045-799-0045. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल, पीआर कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल, विजिटर, टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इंश्योरेंस करवाना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डेड रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईवनस रोड, जून 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 905-678-1200, 905-678-1200. कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल.